0: रखड़ी के पाशाह जी महाराज
1: गुरु हरी दीवार अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आनंद साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी आप जी के पावन स्थान सचखंड दरबार दियां हाजरी भरदे होए आप जी कृपा बाणी दा सत्कार करदे होए बेअंत गुरमुखा प्यारिया शब्द भेट माया हाजिर होइए सच्चे पातशाह नाम नाम सिखे दानी बख्शिश करनी गुरु सिखे जीवन बख्शो नाम दे आरोगता समूह संतान अमरों कामनाएं पूर्ण करने नाम बाणी नाल प्यार बख्शो नाथ जिधर प्रवान करनी यात्रा सफल करनी।

0: सर्व कला भरपूर दिसै जगता नानक दासन दास उदयोग बिनवता जी तेरा नाम सत है श्री वाहिगुरु।
1: सतगुरु सच्चे पातशाह दर्श कीता अपने बच्चे पासों कीर्तन जी हाजी प्रवाई कुटान शुक्राना सतगुरु जी संतान नु बेअंत माया हाजर करदे ने नाम जानी जान सतगुरु सभना दी मनोकामना पाउन चुन दुनिया मार्ग जी सेवा लेखे चलाना हरदम दान यात्रा

अंदर दिल्ली में शीशगंज रकाबगंज बाला साहेब बंगला साहेब सतो चंडिया साहेबा जी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बला रे।

पंचम हरख दिसाख सुनावहे, बंगाल मदमा धोगावहे, ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पहात, अष्टपुत्र पहराव के गावहे गायन पात्र, द्वितीया माल का सक आलाप हे, संग रागनी पांचो थाप हे, गोंड करी अर देव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी, तनाश्री ए पांचो गाई, माल राग का सक संगलाई, मारू मस्त अंग में वारा, प्रबल चंड का सक उभारा, खौखट अपहरानत गाए, अष्ट माल का सक संग लाए, पुन आयो हिंडोल, पंच नार संग अष्ट सोतम,

फते खुशियां दे जकारक जावे सो निहाल हो जावे सत श्री अकाल गुरबार अकाल देख देख फते गुरपति खालसे जी दिनों दिन चढ़ती कला रखनी।

एक ज्ञान के विहीन छीन कह सके तरत है। भूत वन चार छित छो न सब दूधाधारी पौन के हरि सो भुजंग जानियत है। तृण के फजैया धन लोभ के तजैया तो गौवन के जैया वृक भैया मानियत है। नभ के उडैयत है पंच की बटैया देद व गुलाब डाल वृक ध्यान ठानियत है। जेते बड ज्ञानी तेनो जानी पर बखानी ना है असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया दाहे भूचरी गजैया कहे नभ के उडैया सो चिरैया के बखानी है। फल के फचैया दाहे बांदरी गजैया कहे आदि से फिरैया तत भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के फचैया सो जग और साम मानिए। सूरज सिवैया दाहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन चारी दिखि के स नाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटे रुगो कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड रूढ़ पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल परिसाल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पे सहत है। न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठांडे न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पाव वेद वेद योगदेव नेद नेद के कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद जारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विसंगित वेद और पुराण के सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोर दी मदार कित असुरी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है। पीरे ओ पिताम्बर कित गाने न परत ते भूमि तह के फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिजते करे अनेक तोप जी कपट पोसती अनेक दानी वावत है। शीस को कहा मल्ल जो पे काढ़त अनेक दंड सोतन दंडौत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रुक जो पे डारियो रहो उर्दमुख मन तेना मुंड ने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस को। शीस बट कत जाग कान में खजूरा धस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सो आंख को चरैया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सो कहा भयो भेड़ जो खसत शीस पृछन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीजे जो कसो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सो। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक बाय ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान वैन हुजरीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बरागी बने कब हूँ सन्यास भेष बन के दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की हुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पर लगावे बारी कहूँ दंड धारी हो गए लोग न भ्रमावई। कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पांच बार की तर पुकार पर शीतकार गुंजर ओ गदह अनेक दा पुकार ही। कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर डाकु ठारन सो मार ही।
कहा भयो फांसी डार बूढ़ जोड़ दंग धार डार डार फांस डग मार मार डार ही डूबे नरक थार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन के सज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो पाई अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए तो जो पायत अजाप देव बूद ना सदीव तुम।

में जरत गत रान की परत कर पतार के बास की ओ जंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुरक बो राम से इमाम साफी मानस की जात सब एक है पहचान बो। करता करीम सुई राज करहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही के सेव सब ही कुकुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो। देहो राम सीत सोई पूजा ओ निवाज ओई मानस सब एक बयान एक गो भ्रमाव है। देवता अदेव जश गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के फेस।

ऐसे एक धूर दया अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद तरंग कूट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप तया भूत भूत प्रकट हुए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केते कछ मछ केते ऊन को करत भच, केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नव बीच अच पछ को करेंगे भच, केते प्रत्यक्ष हो पचा।

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज मैं तेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित कंग बस कित मदीना मक्का निवास के तक उदास के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गढ़त कित सूह पे चढ़त कित दुख को भरत है। गैन में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हर देवता विरोध हर दान बट बोध हर बोधक प्रबोध हर जापसी घास हर चंदन लगाए हर चो आचार बूझ हर बाहन चढ़ाए हर लापसी। गाह हर गोरन मनाए हर मड़ी मटली हर भीतन लगाए हर छापसी गाय हर गंधर्व बजाए हर किन्नर सब पच हर पंडित तपंत हर तापसी।

रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे। किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फिर मिटे मिटे बनाए अगाध अभयात अद्वय अविनाशी परे अंग परापरम पूर्ण प्रकाशी। न आदंग न व्याधंग अगाधंग स्वरूप अखंड प्रताप आद छे विभूत न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे। न नेहं न गेहं सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे ब्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे स्वभूते भविखे भवाने अचित्रे। नारायं नरंगं नरूपं नरेखं नलोभं नचोभंग भूतंग भेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं। न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभय निर्विखादं। अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग बंडंग बंडंग प्रचंडंग पालंग न दातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भरणंग न वायंग। न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदैवं सदा सिद्ध विरधं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे। नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद अविक्ते अथापे विभुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे। न नेहं न गेहं न शोकं न शाकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे। न धर्मं न वर्मं न सर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे। कहूं कंज के मंज के भ्रम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के वेश के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध।

देह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बाणी कहूँ जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सातकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच्छ विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बाणी कहूँ कोक की काव्य कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव्य रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देववाणी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ वीन विद्या कहूँ गान कीर्तन कहूँ मलेच्छ भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज

जय सतरु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं ब्योत बान, जय जात पात नहीं सतरु मित्र, जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितर मात, जय नाम थाम नहीं बरग ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साध, जय त्रास वास नहीं देह नास, जय आद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल प्याल कट्यौन अंग, अच्छा स्वरूप अखय भंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कतेव, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अक्षय अतोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कल्प जोग साधत दुरंत, तन सीत घाम बरखा सहंत, कई कल्प एक आसन वितंत, कई जतन जोग विद्या विचार साधंत, तत्त पावत न पार, कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमांत, कई ऊर्ध मध्य पावक झलंत, कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद, कई कूक काव कथत कतेब, कई अग्न होत्र कई पवन हार, कई कर्त कूट मृत को आहार, कई कर्त साक पै पत्र भक्ष नहीं, तदब देव हो वत प्रत्यक्ष, कई गीत गान गंधर्व रीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत, कहूँ वेद रीत जग याद करम, कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीरथ धर्म, कई देश देश भाखा रटंत, कई देश देश विद्या बड़ा।

न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात पितंग जेह रचयं छत्रि छत्र चितं जेह राग न रेख न रोग भणं जेह द्वैख न दाग न दुख गणं जेह अंडहते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पदाप प्रचंड लियो श्रे सिंधुरु बिंद न गिंद न कंसरे जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव अभिव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उत भुजंग किए देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जे तात न मात न भ्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुअंग जे जंपह किन्नर जच जुअंग नर नारण पुंसक जाहे किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाजर थातक पांद गणंग भवभूत भविख भवान तुअंग जेहे अंडज सेतज जे रज रंग रच भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बली बन जास गियो फल फूल कली भू मेर आकाश निवास चितंग रच रोज एकादश चंद्र वृतंग दुध चंद दिनी सह दीप दई जेहे पावक।

छोध मतंगन गाद ब्याद अनाद गतंगन खेद अभेद छेदन रंग जह चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग रंग न रेख रुखंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुजे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम पद वेद पुराण सभा जय वेद गते

जय फोकट धर्म सभ तज है एक चित्त कृपा निध को जप है देव या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट प्रति एव वेद उचारत सार सुति जो वारस के जस के रस है देव भूल न काल फंदा फस है।

है सदा भेव भेवनाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदैव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदैव सिद्ध सुध दा प्रताप।

न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है, न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है, अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है, अभूत वेग है बली अरूप राग रंग है, न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है अनंत तेज जानिया, भूम बीज है सदा छिज तेज।

भूमा का जले थले मह जबत जावा मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पार श्रीपत दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे गई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे।

डावरूड बंके बबर बवंके भुजा फरंगे तेज बरंग लंकुड़िया फांदे आयुध बांधे सैन बिमर्दन काल सुरंग अष्टायद चमके भूखंड दमके अत सिमके फुंग फनंग जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जनम चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन तुजा फरंकन फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रखरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा कासल उर्द थे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकार।

प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्रगते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय उसी मखासुर मर्दन आदि कुमार गाथ वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मथे कावरु कुमार अधमुधारे नरक निवारे आदि कथे किंगणी प्रसोहन।

जय हो श्री रक्तासुर खंडन शुंभ चक्रधन शुंभ मथे बारज विलोचन ब्रतन विमोचन सोज विसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुभ्र सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रसंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो श्री महासुर मर्दन आद नाद अकाधूर्धं घंट का विराजे रुण झुण बाजे भ्रम भाजे सुनत सुरन को किल सुन लाजे किल विघ भाजे सुख उपराजे

मनी प्रकाश अंतरना से ज्योत प्रकाश अतुल बले दान वी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रधर खंड वितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दनाद अनाद गाथ वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रता है अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत जतीली धुंध मते अष्टायत चमकण सहस्र चमकण दामिन दमकण आदवते डुगडुकी दमंके बाक बबंके भुजा भरंके सुध गते जय जय हुसी मै खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चशरासुर मारण नरक निवारण पतित उधारण एक भटे पापान बिहंडन दुष पचंडन खंडे

रक्तासुर मर्दन चंड जगरदन दान वर्दन बिडाल मदे सरदार विवर खन दुर्जन धर खन अतुल अमर खन धर्म धुजे धूमराज विधुम सन सोर्ण चुन सन सोम बन

पछ पशु नगन नगन राधि सर्व समय सबको प्रतपार। भूखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे। दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर ते तनहार। दाहत है दुख दोखन कौदल दुजन के बल मैं दल डारे। खंड खंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार। पार न पाए सके पदमापत वेद कते भेद उचारे। रोज ही राज विलोकत राज रोख रोहान की रोजे नटार। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए। देव देव खपे अहंगना वेव लख्यो भ्रम सियो भरमाए। वेद पुराण कतेब कुरान हसेव थके कर हाथ नाए। पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री पद मापत पाए। आद अनंत अगात तवेक्षो भूत भविख भवान अभय। अंत विहीन अनाथ महावादांग अधो का छिद्र अछह। लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभु है। दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त केह अच्छे है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्रीपद मापत ले।

कर पाव संभूह न भेट न पावे, और की बात कहा कह तो सो सो भेट ही के बड़ बीच बचावे। जाच भुजंग सो दान देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे, भूम आकाश पताल रसातल जाच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहूं को नेत ही नेत वेद बतावे, खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुर आनंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो, वेद कतेब न वेद रखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनातन ध्यायो, ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब पुराण अभेद निर्पाण सब पचहारे, भेद न पाए सक्यो अनभेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे, आद अनाद अगाध अवेख अद्वेख जप्यो तिन्हि गुलतारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे, देश फिरे कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुहकारे, दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्वा प्रसाद कपित अत्र के चलैया छत्र छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल है, दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है, ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ता के दाता देव, काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे, गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है, जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे, अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने, पछम के पछमी पछान निज काम है, मरटा मंगेर तेरी मन सो तपस्या करे, दृढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगावारी, दिल्ली के दलवाली तेरी आज्ञा में चलत है, रोह के रोहले मांग देश के मंगेले वीर, बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस न्यावे, तिब्बत आए दुख देह के दलत है, जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो, सर्व धन धाम फल फूल सुफलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश, गंग दान को अभेश कहियत है, रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण, और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार तिज पुंज में अपार, सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है, हाथी की बुकार पल पाछे पहुंचत ताहे, चिड्डी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार, केते कृष्णावतार केते राम कहियत है, केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी, केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है, केते महादीन केते व्यास ब्रवीन, केते कुमेर कुलीन केते जश कहियत है, करते है विचार पैना पूर्ण को पावे पार, ताहिते अपार निराधार लहियत है। पूरा न अवतार निराधार है न पारावार, पाइये न पार व अपार के बखानी है, अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी, महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जा के बाप हूँ न मायता की, पूर्ण प्रभा की सुछटा के अनुमानी है, तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ को तर है के राजसी को सार है, शुद्धता को घर है सिद्धता की सार है, कामना की खान है साधना की शान है, विरक्तता की बान है।

है गनी मन को गारक है, साधन को रचक है गुण को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को गुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है, गनी मन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सतरण के साल है के मित्रन को बोकत है के वृद्धता की बासी है। जो हूँ वो जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ का घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है, अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है मान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है के श्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पार अवार हूं को पार, जय को की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह वसी हल विधा वे पूर्व बिना पार भावे असत्य अनाश है। देवन को देव महादेव हूँ के देव है, निरंजन अभेव नाद अद्वय अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है कटैया जमजाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देव नाद भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया ध्रुव छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरा वध छाज कैसी छत्रा नेर छपा कर कैसी छप कालिंदी के कूल के। हंस निशि सिंह रूम हीरा सिंह हुसैन बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के। चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदगढ़ की रत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोहियत है। हिमासी हिमालय हर हार सी हलपा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमासी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार बकान सी विलंदावाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी इसके तुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है। बखरी गंधारी गोर गखरी गर्दे जचारी पौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है। पूर्ण प्रताप जंत्र मंत्र ते अता बिना तक।

जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए धृग जीवै धृग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लखिया लखास धन धन सत संगत जि

लहु उबारे। कब्यो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दरछा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सभय तुम गावो, आप हाथ दय मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवार, सेवक सिख सभय कर तारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास नवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री असध्वज जो करियो रक्षा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा।

रच दीनी। काहू फूल राजा हुए बैठा, काहू सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेच्छ करो रणघाता। जे अस दुज तौ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट न हैं। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध घर मु सब होई, दुष्ट छा छुए सकै न कोई।

चौपई सम सतरै सैस भणिज अर्ध सैस फुन तीन कह जय भादौ सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री

दरो अब रीज के देहो वह हम कहो जहाँ बिनती कर जोर करो जब आओ कि औध निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरो दोहरा दसम कथा भागवत की भाखा करीब नाय अब

होइरा ऐसे चित प्रताते जुन प्रिय प्रताप तिन लोक जय जय कर रे नाम सुजाद होइरा सकल द्वार को छाड़ के कहे द्वार हो द्वार बहन के लाजा सुग बिंदास द्वार दोहिरा राज करेगा खालसा की रहे ना कोई द्वार वो सन के बचे संजो होए उड़ गए सभा बने की कर कुड़ा पासार टुकड़ा बजा दे पाने कन कवतार छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र पुते श्याम बहु सुन सरदास जूते दुकान प्रणास दयालन सुपे सदान संगे आप हम विभूते देते को पते निष्ठ पेत गया पत आज नान गुरु गोविंद सिंह श्री अकाल पुरजी साहब दरबार में तुरु दरबारा सचखंड से निकारा लक्ष्मी प्रिय तुमरे दरबारा सजते नमस्कार दोहरा नान गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण अवतार जगम जोत विराज रे श्री अचलंगरा पार सचखंड के